ये है लेकिन मर्द ऐसा छुपा जिसमें लागे गर्दिशे चरखे कौन भी है, छुपा जिसमें अलाजे गर्दिशे चरखे कौन भी है, जलाना जला मन भी है ये मन भी है। बड़ा जी, मैंने तीन शेर आपके सामने पेश किए हैं, बात मोहब्बत की है। अल्लामा साहब ने इससे चूंकि बंद आखिरी वो कंक्लूजन तक पहुंचे हैं, वो नज़म का इख्तिताम हो रहा है, तो याद रखें कि शायरी के अंदर जो है या आम मजमून के अंदर भी आप देखें कि जो आखिरी सतरें होती हैं, आखिरी जो लाइनें आदमी लिखता है, वो उस सारे निचोड़ पेश करना चाहता है। कोई किताब लिख रहा है, उस किताब के आखिरी हिस्से के अंदर आप देखें, आखिरी जो चैप्टर होगा उसके अंदर वो काफ़ी चीज़ें जो है वो निचोड़ वहाँ पर बयान करेगा कि मेरा लुब्बे लबाब क्या है, मेरा मकसद इस तसनीफ लिखने का क्या मकसद क्या है। बहरहाल शब्द जो है वो तकरीबन एक बंद के आखिरी हिस्से जो होते हैं, और एक शेर की जो जिस हम पंजाबी में लिखते हैं हमारी जो है वो रुबाइयाँ होती हैं, वैसे ये रुबाई जो है वो चार कलियों पर भी होती है, आगे कुछ जो है वो अपनी मुसद्दस भी होते हैं, मुफ्तीद की भी अपनी तरतीब है, बेशुमार और भी पंजाबी पटवारी के अंदर ये तरीके से लिखे जाते हैं। लेकिन मैं ये कहने का मकसद ये है कि आपकी जो है वो असल में उसका लुबे लबा है, एक शायर जो है वो नतीजा निकालना चाहता है, रिजल्ट चाहता है कि मैंने ये काम किया किस मकसद के लिए किया है। तो कहते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं जो इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, वो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दुनिया के अंदर एक ही चीज है, वो है मोहब्बत। ऐसी चीज है जो किसी से की जाती है, जो जिस चीज से की जाती है, और जो आदमी खुद वो चीज करने वाला है, और मोहब्बत एक बहुत बड़ी चीज है। इस मोहब्बत उसको ये इस नज़म के अंदर यह है एक दश्त का कि दश्ते यानी मोहब्बत। अल्लामा साहब ने इस मोहब्बत को ये समझाने की कोशिश की है कि अगर इंसान ये समझे कि मोहब्बत एक बहुत बड़ा बियाबान जो है ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ कुछ चीज जो है वो आपको सैराब मिलेगा, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, पानी नहीं है,

0: जबकि देश के अंदर जो है अब ये जुदाई इस इंसान के लिए, इस इंसान के लिए जो जाहिर है क्योंकि हम अपने मुल्क से आते हैं, हमारे लिए ये जुदाई बड़ी मुश्किल है। एक और इंसान है जुदाई वो किसी और जगह पे है। ये कहने का मकसद ये है कि वो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि मोहब्बत ही वो मंजिल है कि मंजिल भी है और सहरा भी, लेकिन वो मंजिल और मंजिल नहीं है। आप ये समझे कि वो बेआब हो गया, वहां पर रेगिस्तान है, वहां पर तकलीफ है, वो सब है, लेकिन आशिक के लिए ससी जो है वो पुन्नू की तलाश में किस तरीके से उसने थल का रास्ता अख्तियार कर लिया, फिर वहां पर जो वो रास्ता उसको भूल गई, फिर वहां पर वो किस तरीके से जो है वो जो अपने महबूब की तलाश में आखिर उसने अपनी जान दे दी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मोहब्बत है ये एक मंजिल भी है, सहरा भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब मुश्किल है, सब तकालीफ है, सब कुछ है, लेकिन तकालीफ से ही परेशानियों का जो है वो इलाज निकलता है। यहाँ इस उसके जवाब के अंदर जो है यहाँ तकलीफ आदमी जो है देखे दुनिया के अंदर आप देख लो कोई काम मिलेगी ना, तकलीफ से निकलेंगे तो फिर आसानी मिलेगी, यही उम्मीद से इंसान जो है वो चलता है। और अल्लामा साहब कहते हैं कि मोहब्बत जो है यही एक पैगाम है, और कहते हैं कि ये जर्स भी है, जर्स कहते हैं वो घंटी को, घंटी एक अनाउंसमेंट होता है, ये उस वक्त पुराने वक्त में होता था कि जब काफिला जो काफिले वाले जो थे, काफिले वाले मसलन 2-4 हज़ार आदमी जो था वो इकट्ठा सफ़र करता, एक दूसरे मुल्क में जाने के लिए इकट्ठे सफ़र करते, उसके अंदर वहाँ पर वो कोई आदमी अपना लीडर भी बना लेते, इसके बाद जो है फिर एक आदमी वो अनाउंसमेंट करता, स्पीकर नहीं होते थे उस वक्त, घंटी बजाता, हो सकता है कुछ ऐसा फायर करता, कुछ ऐसी एक्शन करता, कोई ऐसा तरीकाकार करता ताकि वो काफिले वाले जो सोए हुए हैं, जो आगे पीछे हैं, वो जाग जाए, उनको पता चल जाए कि काफिला रवाना हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सोए हुए ये जो चीज इस्तेमाल करती है वो जगती है, वो घंटी उसको कहते हैं। तो लामा साहब कहते हैं ये एक घंटी की भी, देखिए ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, लामा साहब ने जो शायरी की है, मुझे ये बताएं अपना काम काज छोड़कर, उन्होंने सब कुछ छोड़कर जो इस शायरी को क्यों अपनाया, इस फील्ड को क्यों अपनाया, कि मोहब्बत की वजह से, एक प्यार इसकी वजह से। और यकीन कर सो अपनी जबान का इत और असर कोई नहीं रहना है जी, ये खास करना चाहता हूं। ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें से आपको असर कुछ नहीं होता, लेकिन से बहुत कुछ, बस ये बात जो है ना ये फिर कभी बताऊंगा कि जब आसल को फिर आसल बहुत ज्यादा, बस ये इंशाल्लाह बाद में मज़मून फिर चला जाएगा। ये घंटी भी है, ये मोहब्बत की ही एक घंटी की आवाज है, मोहब्बत ही जगाती है, मोहब्बत की लम साहब सोई को क्यों जगा रहे हैं जी, वो सोए लोग उनको क्या है, वो अपने घर में रह रहे हैं, बड़े PhD है, बड़े पढ़े लिखे हैं, उनको क्या जरूरत है दूसरे की। जिस आज हम समझते हैं कि मेरे पास खाना मौजूद है, सब कुछ है, याशी हर चीज़ है, हमें दूसरे की परेशानी किया कि क्या जरूरत है परेशानी करने की, वो छोड़ो जी दो अपने कमरे की तो ठीक करो। कभी कभार हम देखे बातें करते हैं तो ये कहते, इसका मतलब ये है कि हमारी मोहब्बत का मियार नहीं है बल्कि हमारा नफरत का मियार, असर का मियार बहुत, हम चाहते को अभी थोड़ा सा आगे चला जाए। और उस वक्त लोग थे वो साथ चलाते, वो कारवां जो है वो कहते मोहब्बत एक कारवां भी है, अब मोहब्बत घंटी भी होगी, जगाने वाली भी होगी, वो जगा भी रही है, मोहब्बत एक वो मकाम हासिल कर रही है, मोहब्बत जो है एक मकाम कारवां वाला कर रही है, सारे इकट्ठे चला रही है, मुफीद इतफाक के साथ इकट्ठे चलने की दावत दे रही है। आगे लवज फरमाते रास्ता दिखा रही है, इस रास्ते पर चलोगे मंदिर पर पहुंच जाओ, इस रास्ते से भटक जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन साथ ये कहते हैं कि ये राजन भी है, अब जो है रब होता है रास्ता दिखाने वाला जी, और राजन वो होता है जो रास्ते में लूटने वाला जी, अब ये लूट भी लेती है, अब ये लूटने का जो कंसेप्ट है ये भी फकर के अंदर और इश्क वालों के अंदर भी दो किस्म के हैं। एक तो लूटता है चोर, बाहर से आया सबको लूट लूट के सूट करके सबको ले गया, कुछ ना हुआ बचा, अब वो जो लूटने वाला है उसको की मोहब्बत क्या है, दौलत के साथ है, पैसे के साथ है, जुल्म ज्यादती के साथ है वो एक अपना, और क्या हुआ कि वो आदमी जो था उसको खत्म कर गया, कुछ उसके पास कुछ ना बचा। सब कुछ लेकर चला गया, भाग गया, उसका नुकसान कर गया। अब जो दूसरा जो आशिक लोग कहते हैं, कभी कभी महबूब जो है वो उसके दिल पर जो है वो डाका डाल लेता है। अब उस महबूब का दिल जो दिल के अंदर जितने भी ख्वाहिशें हैं वो उठा कर ले जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। अब जो कुछ है वो महबूब के पास है। और यही जो है ये जो मोहब्बत के बारे में ये कहा जाता है कि बस जो है वो इस तरह हुआ। कभी कभार बेशुमार शेर शायरी के अंदर भी बेशुमार आपने देखे होंगे, ये कंसेप्ट भी यही है कि महबूब जब मेरे दिल में बस गया, जब मेरे दिल में आ गया, इस उसके आने से पहले बड़ी ख्वाहिशें थी मेरे दिल में, मैंने भी दुनिया में बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ करने का प्लान था, बहुत एक और मंजिल पर मैं चढ़ रहा था, पता नहीं किधर किधर मैं क्या क्या क्या से क्या कर होना चाहता था। लेकिन जब महबूब ने आकर यहां पर डेरा जमा लिया, महबूब ने यहां आकर मुझे लूट लिया, तो फिर मेरा कुछ ना बचा, फिर मेरा कुछ ना बचा। अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे महबूब के पास है। अब मुझे वो कहता है कि बैठ जाओ, मैं बैठ जाता हूं। मुझे कहता है खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूं। मुझे कहता है कि बस इधर बैठ जाता हूं। महबूब कहता है खाना नहीं खाना, मैं खाना खाना खत्म कर देता हूं। कहने का मकसद ये है, वो कभी कभार ये मोहब्बत जो है ये रूप भी धार लेती है। लेकिन अल्लाह साहब फरमाते हैं जितने भी रूप धारे, जितने भी किसी को लूट लिया है। और दूसरी बात ये भी है कि जाहिरी तौर पर है, एक आदमी को नुकसान हो गया, चलो किसी के पैसे गुम हो, कुछ चीज गुम हो गई, आज तो हम पता नहीं किस किस को जो है वो अल्जाम मुर्दे अल्जाम ठहराएंगे, पता नहीं क्या क्या शिकवे नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला तक ले जाएंगे, ये हुआ वो हुआ। लेकिन अगर दूसरी साइड ये देखो कि यार ये दोनों तो मेरी थी नहीं, मुझे तो अल्लाह की थी, अल्लाह ने ले लिया है, बस वो चली गई किसी तरह से, तो मुझे अल्लाह ताला सब्र शुक्र अता फरमा, हो सकता है कि ये चीजें। दूसरी बात एक शरी मसला ये भी है कि अगर कोई आदमी का नुकसान ज़ाहिरी तौर पर होता है, ये दुनियावी को नुकसान किसी आदमी का हो गया, फायदा नहीं है, तो वो कहते हैं कि उस वो नुकसान जो है हो सकता है बड़े नुकसान से बचने का एक रास्ता अल्लाह ताला ने कर दिया है। एक मतलब एक चीज़ होगी कि फर्ज एक बंदे का बहुत बड़ा नुकसान होना था, छोटा मोटा नुकसान हो गया, चलो। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर नुकसान जब उसका होगा, उसके दिल के अंदर दर्द आएगा, उसके अंदर एक तकलीफ होगी, शायद वो रास्ते पर भी फिर जो है चल पड़े। तो बेशुमार चीज़ें पर लामा साहब की जो बात है वो ये है कि मोहब्बत ही वो मंजिल है, कि मंजिल भी है सहरा भी, जरस भी कारवां भी, राबुर भी राजन भी है। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि ये किसी भी दर्जे पर चली जाए, मोहब्बत का कोई भी तरीकार हो, कोई भी रूप हो, लेकिन ये मोहब्बत मोहब्बत है। मोहब्बत जो है वो जब आप, और एक और नुक्ता यहाँ पर ये है, एक अहल इश्क है, आशिक है, जब महबूब के रास्ते पर चल पड़ता है, फिर वो उसका जो सहरा है, जो उसका वतन है, जो उसका देश है, जो उसका गिनती है, जो कुछ भी है, वो ये समझता है कि सब कुछ जो कुछ मर्जी है। लेकिन अल्लामा साहब ये कहना ये चाहते हैं और अहले इश्क ये कहते हैं कि वो सब चीज़ें तकालीफ उसके लिए आसाइशें बन जाती हैं, क्योंकि उसकी मंजिल जो है महबूब से मिलने की है। बल्कि वो जान भी जा रही होती है, फिर भी खुशी से जान दे रहा होता है, उसको पता है कि मैं तो महबूब से अभी मेरी मुलाकात होना है। वो तो और ज़ाहरी तौर पर भी जो लोग हैं जो आम लिहाज के मुताबिक जो हैं वो चल रहे हैं, आम लिहाज में अगर किसी आदमी को मकसूद हासिल होना हो रहा हो, यानी देखना कोई आदमी है कोई एक दुनियादारी के काम में भी अगर बिल्कुल वो सख्त किस्म की परेशानी में भी उसके बावजूद भी जब उसको पता है ये कामयाबी मिलने वाली है, हो सकता है वो खड़ा हो जाए। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है। अल्लामा साहब जो है वो मोहब्बत को कह रहे हैं कि मोहब्बत भी एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा तरीक़ाकार है। लेकिन ये कहते हैं कि मर्द कहते हैं इसको ये, लेकिन है मर्द ऐसा छुपा जिसमें अल्लाह जी गर्दिश चरखे कौन भी है। लोग कहते हैं कि ये मर्द है, कहते हैं मरीज मोहब्बत है जी, ये मोहब्बत ही पे ही गया, ये आशुक है जी, आशुक हो गया है जी, ये कपड़े फाड़ी सटे से एयर सिस्टम की था। ये लोग ये समझते हैं ये मर्ज है, ये मोहब्बत जो है कि मर्ज का, ये कहते हैं कि ये मोहब्बत जो है ऐसी बीमारी है, हैं जी। तो वो दुनिया की बात तो लम्हा साहब कहते हैं, लेकिन बिल्कुल इसको बीमारी समझा जाए तो लम्हा साहब समझते हैं कि ये बीमारी अगर किसी को लग जाए तो फिर कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो उसकी तकदीर में ख़त्म हो जाती हैं। बेशुमार बीमारियों का ये इलाज है। पर ये बात जो फिर हम आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, अभी ब्रेक का फिर टाइम हो चुका है और इसके बाद अगला जो हिस्सा हमारा है वो अज़रमिया साहब की शायरी का है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर ये प्रोग्राम देकर हाज़िर होंगे। गलती की माज़रत जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की मिसाल दे दें कि मोहब्बत और प्यार की वजह से कितनी तकलीफ उठाते थे।
1: This is Adam. My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Shah.
1: उसमें।

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।

तो क्या थोड़ी देर पर ख़त्म हो जाना। एक जगह पर दुकाना मेला लगा जो थोड़ी देर पर तक कोई मेला उजड़ गया। एक चीज़ अज होनी पी वो कल ख़त्म हो गई। मतलब ये होना यह पक्की तो नहीं ना, हकीकत सच जो होना हमेशा दायमी होना और पक्की चीज़ होनी। बहरहाल ये लिखने होना कुछ लोग जोड़े होने और कुछ हकीकत ना कि मेरे उस्ताद मुहर्रम जनाब बंडी फरमी साहब लिखा कि कई गुमराही पाई गल फाई तो कई राज मजाज चुपा के हूँ। दो ही तरीके जो मजाज दुनिया है ना या तुम मजाजी महबूब कोई तलाश करी किन्ने हो कुछ लोगों गल किया कि उतों गुमराही हासिल कर ली वो गुमराह हो गए। यानी अपने आप की इस दुनिया ने पिछे इस मोहब्बत ने पिछे ये जो जहरी मोहब्बत है ये जो जहरी प्यार इन्होंने पिछे अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिता। इसका मतलब हो गया मेरे उस्ताद मुहर्रम फरमाया कि गुमराह हो गए तो कई राज मजाक पा किंदा तो कई उन्होंने मजाक कोई राज पाया। एक हुसन की देखे उन्होंने फरमाया कि क्या ये हुसन गया। उलमा साहब लिखा जो नीचे से ऊपर शन सनम देखते हैं वो सर पहले ही अपना कलम देखते हैं। तो फरमाया गया तमें न तुझसे गर्ज है न तेरे हुसन से हम तो मुसव्वर का कलम देखते हैं। तो बर बात यह है कि ये भी मुकालमे होते रहे शायरी के अंदर बातें इस किस्म की बातें भी होती हैं वाकयात आ जाते हैं लेकिन ये लोग जो हैं ये जाहिर को देखकर हकीकत की खबर हासिल कर लेते हैं। कुछ फकीर ये गल आने कि जाहिर जरा रस्ता है मजाद कच्चा रस्ता कच्ची रोड है लेकिन कच्ची पर टूरने अस धक्के लगने असन मुड़िए पक्की कर सो जल तो पक्की पक्का इश्क हकीकी है अल्लाह और अल्लाह के नबी लाल इश्का पर इश्क उस मंजिल तक पहुँच जाना तो फिर सारी चीज़ें हो जानियाँ कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोग कलम तेरे हैं फिर सारिया चीज़ों तुम लभी जानियाँ फिर कापी मिलनी तख्ती मिलनी सब कुछ मिलना फिर जगह भी वो फिर बड़ा बहुत कुछ मिल जाना। बहरहाल जी चूंकि हजरत मियाँ साहब ने कलाम है तो मियाँ साहब फरमाते वो आशिक ना उम्मीद ना होवन आशिक ना

0: are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, mazeersolicitors.co.uk. Mazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in

0: तू सब का है खुदा, तू सुन मेरी दुआ। ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा। तू सब का है खुदा, सुन मेरी दुआ। ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर, कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।

सदाबहार है खुदा के लिए, सना खुदा के लिए है बशर सना के लिए, तमाम हम्द सदाबहार है खुदा के लिए। तेरे करम ने वहीं आके दस्तगीरी की।

स्पेशल में फैसल याकूब सुल्तानी का सलाम कबूल हो। ब्रेक के बाद अब आपको मजीद क्वाली सुनाएंगे, कलाम सुनाएंगे, तो चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busy solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Mazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम डॉट यूके पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre

उस वक्त आपकी और मेरी बात नहीं हो सकती, तो कोशिश किया करें कि अगर कहीं भी अगर आपको कोई ख़ास कलाम सुनना है तो आप मैसेज कर दिया करें, ताकि वो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके लिए शामिल कर लेंगे जब हम दोबारा रिकॉर्ड करवाएंगे। ब्रेक के बाद अब चलते हैं, सिलसिला जारी रखते हैं और चलते हैं अगली कवाली की तरफ।

0: 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub with an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye. nayabsonline.co.uk
3: एक्सीडेंट हो गया
4: जी होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्लाइंट की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत में हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम गिरदोन वाले इलाकों में टैक्सी प्राइवेट हायर गड्डी तुम्हें मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.

0: Keep listening to Link FM for the latest local and
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियाँ अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्यूनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
0: Today, tomorrow, every day, Sheffield's Link FM.

0: Usman.
1: My name is Sai Mudashir.
2: This is Rahul.
3: You are listening to Link FM 96.7.
4: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
5: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
6: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Mizzier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, mizziersolicitors.co.uk. Mizzier Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम .uk पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre

0: 07419-299-729.
1: Nayard's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home. Keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye. nayabsonline.co.uk.
3: एक्सीडेंट हो गया
4: जी होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइम गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया तो द क्लेम टीम तुम खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.

0: I'm Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Shai Mudashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning कॉन्टैक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड
1: 96.7 लिंक एफएम।

0: Sheffield's very own community radio station.
1: Link FM.
2: आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7।

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield

0: are listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।

डांग देखना। हाथों में सबके खंजर, हाथों में सबके खंजर, चुपचाप देखता हूँ रिश्तों।

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Mizzier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, mizziersolicitors.co.uk. Mizzier Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects

0: मदद करने के बजाय आप हमें इसे छोड़कर जा रहे हैं।
1: देखिए, 20 दिन से हम आपकी मदद ही कर रहे हैं। हम आपको जानते भी नहीं हैं और ना ही आप हमें अपने बारे में कुछ बता रही हैं। यहाँ से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते अपने घर। ये रखिए, ये आपकी हिफाजत करेगा।
0: मैं आपके घर तक आपके साथ चलूं, उसके आगे मैं खुद चली जाऊंगी।

0: 729.
1: Nayard's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home. Coming back for more.
1: Just get coming to me. Online.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइम की गड्डी ना एक्सीडेंट होई गया है तो द क्लेम टीम तुम की खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम ते गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.

Assalamu alaikum. Radio Link FM 96.7 से शहनाज बानो आपसे मुखातिब है. जी हाँ सामईन, प्रोग्राम गीतों की महफिल लेकर हाजिर हूँ. जैसा कि आप जानते हैं, हर मंगल के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरा ये प्रोग्राम पेश किया जाता है. और फीडबैक के लिए मैं आपको स्टूडियो नंबर बताती चलूं. स्टूडियो नंबर है 0114-261-8181. इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए, 0793984939. और सामीन, हमेशा की तरह आज मेरे प्रोग्राम में आप सुनेंगे कुछ कवाली, कुछ फिल्मी गीत और कुछ पंजाबी गाने. और कुछ सूफियाना कलाम भी शामिल रहेगा. और फेसबुक पर भी मेरा ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो सामीन, मौसम तो बहुत अच्छा है. अगर आप कहीं बाहर निकले हुए हैं और कार में हैं तो अपना रेडियो ऑन कर लीजिए और सुनिए गीतों की महफिल. तो सबसे पहले मैं आपको एक कवाली सुनवाती हूँ, साबरी ब्रदर्स की ये कवाली है. वैसे तो इस कवाली को बहुत से कवाल ने गाया है, लेकिन शुरू में जो गाया था सबसे पहले, ये साबरी ब्रदर्स ने इसको गाया था. और ये उनकी ओरिजिनल कवाली मैं आप लोगों के लिए निकाल कर लाई हूँ. तो चलिए सुनते हैं, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद.

जी सामिन, चलिए कोक स्टूडियो के बाद अब एक और गीत सुनते हैं और ये अमीर खुसरो जी का कलाम है और इसको गाया है नाहिद अख्तर जी ने।

छाप तिलक सब छीन लीरे मुझसे नैना मिलाई के। जी हाँ, अमीर खुसरो जी का कलाम आपने सुना नाहिद अख्तर जी की आवाज़ में। तो चलिए अब एक गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं और गाने वाली हैं माला बेगम जी।

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

कर न सके हम प्यार का सौदा, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। ये तो थे अताउल्लाह खान ईसा खेलवी जी। तो चलिए अब समाज फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback. Azir Solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. The Azir Solicitors is trading style of affinity 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330057109 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield

रेफर ना कर रहा हो तो आप समझ लें कि भाई इस वक्त आपकी कॉल आंसर नहीं हो पा रही। उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। इफ यू वॉन्ट मी टू प्ले वन ऑफ योर फेवरेट ट्रैक देन यू हैव टू रिक्वेस्ट मी वाया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के जरिए आप हमें अपने फेवरेट ट्रैक्स का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कॉल के जरिए समटाइम्स मुश्किल हो जाता है क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए आप सही राइट स्पेलिंग में लिखते हैं। समटाइम्स पीपल इवन शेयर देयर लिंक्स आल्सो, यू नो द ट्रैक्स के लिंक्स होते हैं। I'll really appreciate if you can WhatsApp me on 0793984939। उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे और आपने हमें ड्राइव टाइम में ज्वाइन किया होगा। कलीम ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। शबराज खान ने ज्वाइन कर लिया है, कह रहे हैं सलाम, वालेकुम अस्सलाम।

in 40 seconds, so stay tuned. And WhatsApp me on 0793984933. अभी मैंने कहा कि मुझे WhatsApp करें और फिर वो कॉल्स कर रहे हैं. ओ भाई WhatsApp करें, WhatsApp 0793984933 पे करें अगर आप कोई अपनी पसंद का ट्रैक सुनना चाह रहे हैं.

अगर आपने अभी अभी रेडियो को ट्यून किया, मैं हूं जवाद जंजुआ। स्टूडियो नंबर इज 01426181881 एंड व्हाट्सएप 07939849339। दिस इज नॉट अ फरमाइशी प्रोग्राम, बट इफ यू स्टिल वॉन्ट मी टू प्ले वन ऑफ योर फेवरेट ट्रैक, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, वो मजीद कॉल कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप कॉल कर दें और बता दें कौन सा ट्रैक आप सुनना चाह रहे हैं, कौन से प्रोग्राम के बारे में राय देना चाहें या मुझसे बात करना चाहें, दैट इज डिफरेंट। लेकिन जो रिक्वेस्ट हैं वो हम व्हाट्सएप के जरिए लेते हैं। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन डू सो। और ठंड प्रोग्राम में जी हमारे वो जो लिसनर्स हैं और वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो व्हाट्सएप करते हैं हमें, जो तकरीरें और भाषण भी शेयर करते हैं अपना, कि आज आप कम बोल रहे हैं, आज आपने क्यों नहीं बोला, आज आपने ये किया, वो जो ड्रामे ख़त्म नहीं होते उनके, जब हम बोल रहे होते हैं तो ये लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे होते। और दूसरा आप अगर देखें, कंपेयर करते हैं, चलें लेट्स कंपेयर ड्राइव टाइम शो विद एनी अदर शो। आई अंडरस्टैंड के आई टॉक टू मच, ड्राइव यू वांट टू एंजॉय द म्यूजिक, सो इन सम ऑफ द ड्राइव टाइम शोज आई टॉक लेस। लेकिन जब मैं लेस टॉक कर रहा होता हूं पता नहीं क्यों इशू बन जाता है यार। अब अगर ये वाली खता आपने कर दी है तो फिर गिला क्यों कर रहे हैं अली भाई? यही तो सबसे बड़ी खता है भाई, कि किसी को अपने दिल का हाल भी ना बताया जाए। क्योंकि मसला ये है भाई कि आज के दौर में कोई डिजर्व ही नहीं करता कि किसी को अपने दिल का हाल बताया जाए। फिर ये ट्रैक मुझे मिलता है मैं जरूर लगाऊंगा आपके लिए। और बाकी भी लिसनर्स अगर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम में, अगर चाहते हैं कि आपकी पसंद का ट्रैक लगे, व्हाट्सएप 07939849339।

0: किसी।
1: अली हैदर भाई, मैंने बीच में कुछ नहीं कहा था, मैंने आपको एंजॉय कराया था ट्रैक यार।
0: तो जब होके हम हाल दिल।
1: भाई आज के जमाने में सबसे बड़ी खता यही है,
0: किसी को चाहते रहना कोई,
1: ये भी बहुत बड़ी

आजकल चाहत वाहत का जमाना नहीं है मेरे भाई। हाल दिल किसी, और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो भाई अपने आप में रहें आप, समझ रहे ना आप। और यार ये भाई पता नहीं मेरा जो है ना, इसको मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि कॉल ना कर, लेकिन इसने कहा है कि आज मैंने तपाई रखा है। मैं क्या उम्मीद करते हैं कि आपका आज का प्रोग्राम भी आप पसंद कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि स्कूल हॉलीडेज शुरू हो चुकी हैं, तो इस वजह से आगे के जितने हफ्तों के प्रोग्राम होंगे वो बड़े ठंड प्रोग्राम होंगे। क्योंकि कई लोग जो हैं, कई पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों को लेके हॉलीडेज पे जाएंगे या जा चुके होंगे, कई जा चुके हैं भाई।

तो जाहिर सी बात है हमारी जो लिसनरशिप होती है वो थोड़ी सी ड्रॉप होती है ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल. कोई प्लान नहीं है, आप कहीं छुट्टियों पे नहीं जा रहे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, लिंक एफएम के साथ जुड़े रहें. लिंक एफएम आपके साथ साथ चलता रहेगा.

यार ये भाई मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हमारी फोन लाइंस काम नहीं कर रही। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू डोंट रिंग अस टुडे। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, इसी वजह से आप हमें कॉल कर रहे हैं। काफी देर से मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि आज कॉल ना करें, हम कॉल नहीं ले रहे। और अगर आपने कोई ट्रैक सुनना है तो ट्रैक के लिए सिर्फ व्हाट्सएप इज द ओनली ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग? और शबराज खान साहब ने भी हमें मैसेज किया था, कह रहे थे सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं शबराज भाई? आप भी ठीक हैं? समटाइम्स होता है कि हमारे पास जो व्हाट्सएप सिस्टम है वो, क्योंकि हम मोबाइल के ज़रिए नहीं मैसेजेस रीड करते, सिस्टम के ज़रिए यूज़ कर रीड करते हैं, तो भाई अगर आपका मैसेज मैं रीड ना कर पाऊँ कुछ दिनों में, समटाइम्स होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम आपके मैसेजेस नहीं पढ़ते। बिल्कुल पढ़ते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है आंसर करता हूँ मैं। आपका काम है अपनी खैरियत मुझे बताएं, आपका काम है कि आप ये ज़रूर बताएं कि आप प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं या नहीं। भाषण ना दें कि भाई आज तकरीर कम हुई है या आज तकरीर ज़्यादा हुई है। We compare drive time with any other show, any other shows in any other radio station. क्या होता है यार, प्रेजेंटर एक इंट्रो देता है, प्रोग्राम के बारे में बताता है कि कहां पर हम लाइव हैं, क्या कुछ हो रहा है, ट्रैक लगाता है, साथ में कहता है उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रैक अच्छा लगा होगा या नहीं अच्छा लगा होगा। समटाइम्स आपकी फरमाइश के ट्रैक पूरे किए जाते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं, दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। लेकिन जब मैं ऐसे प्रोग्राम कर रहा होता हूं तो भाई क्यों सारे तक मेरे से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो जाते हैं? मैं यहां बैठा हुआ क्या पॉलिटिकल शो कर रहा हूं भाई, कि मैं यहां म्यूजिक की जगह बातें करता रहूं? मैं पॉलिटिकल शो तो नहीं कर रहा। ड्राइव टाइम इज अबाउट म्यूजिक। भाई

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

भी याद रखिएगा। प्रोग्राम के दौरान अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जिंदगी रही और ये सांसें इसी तरह चलती रही तो फिर मुलाकात होगी। जी फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ के फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह एन अल्लाह हाफिज।

अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों सज्जनो, मैं आ गया प्रोग्राम के अंदर प्रदेश विच देश, जड़ा हर मंगल दिन शामिल 6 to 8 बजे पेश किया जाना लिंक FM 96.7 लिंकिंग कम्युनिटी थिंकिंग पॉजिटिव। स्टूडियो नंबर 0114261 8181, व्हाट्सएप नंबर 0793984939। सब दोस्तों के मैं वेलकम करना अपने प्रोग्राम प्रदेश विच देश, जितने दोस्त साथ देने सब दोस्तों ने बहुत बहुत शुक्रिया, ये थोड़ा अपन लिखे हुए हैं जरूर। इस तो पहले जावेद भाई ने बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा तरह जबरदस्त उन्होंने प्रोग्राम होना, बहुत ही दिलन करने प्रोग्राम, तो जितने दोस्त साथ देने सब दोस्तों ने बहुत बहुत शुक्रिया। तो हूँ पहले दोस्तों की सुनाने सैफ मलूक, तो फिर उस तो बाद दोस्तों ने फिर मैशन गाफिया पर फिर

उम्मीद है कि दोस्तों की पसंद आया उसी जबरदस्त ही ना। तो हूँ सुनाने ए नेक्स्ट ए चंद दोस्तों की पसंद है, सुनो।

उम्मीद है दोस्तों की पसंद आया सी जबरदस्त सी ते हुण इक होर इह सुणाणे इह उम्मीद दोस्तों की पसंद आई सी क्योंकि फिर ब्रेक आई गया सी इह सुणो

0: You are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, mazeersolicitors.co.uk. Mazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0330571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम डॉट यूके पर तलाश करें
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield

0: 07419 299 729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: We'll keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye. Visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हाथ चलाने हो या फिर कोई क्लाइंट की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.

आदमी के दोस्तों की पसंद आया सी, जबरदस्त सी। जितने भी दोस्त साथ हैं सब दोस्तों ने बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली ऑन फेसबुक और जितने भी सारे गुमनाम हीरो लिंक एफएम ने, ये उन सब वास्ते है।

उम्मीद है कि दोस्तों की पसंद आया सी। तो हूँ दोस्तों इजाजत के साथ जितने दोस्तों साथ दिया सब दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली लिंक ने गुमनाम हीरो उन्होंने भी शुक्रिया। तो अल्लाह सुनने वाले दुआएं याद रखे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती। उन्हें आखिरी दोस्त सब दोस्तों वास्ते जरूर पसंद सुनो।

0: My name is Azan Mudassir.
1: You are listening to Link FM 96.7.
2: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
3: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
4: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब

0: listening to Link FM for the latest local, national and
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज्यादा अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियाँ अब भी मौजूद है और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती है। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.UK/childhoodvaccinations।

0: with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
1: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
2: लो जी सुनो जी आई गए खान कैटरिंग आले खान कैटरिंग राधरम जिन्होंने मजेदार खाने ना कोई जवाब है नहीं एक बारी अजमाई के तको शादी ब्याह सालगिरह मानिया मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्ता एक महंगाई ने दौर विच सस्ता ता मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो एक और भी गल बुझो खान कैटरिंग राधरम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने आर्डर निका होया या बड़ा ऑलवेज वेलकम खाने ने आर्डर वास्ता भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर राबता करो 07931737547
3: या 07784850934.
4: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
5: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम सुबह की रोशनी शाम की महफिल हर दिल का राज है लिंक एफएम दिल से आपके साथ लिंक एफएम

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback. As your solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. The Zia Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330057109 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या claimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in

0: चिकन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: On 96.7 and around the world online.
3: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.

0: listening to Link FM for the latest local.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.UK/childhoodvaccinations।

0: know, your unwanted clothes can make a big difference in someone's life. Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield, S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Keep you coming back for more.
1: Just get khanon ke liye. nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइनिक गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया ते द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together, broadcasting from the Pakistan Muslim Center, Link FM.

0: bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre, Link FM.
1: Link FM.
2: You can listen to...
3: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।

की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक।

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।

0: फिर हो ना हो इकरार करना पड़ता है, पूरी उम्र भी कयामत का इंतजार करना पड़ता है।
1: नानी माँ तुसी एने दिना तो कुछ लिखी जाने ओ सुनांदे हैं नी।
0: पुत एक कहानी बहुत लंबी आ, तेनू सुनदे सुनदे नू नींद आ जानी आ।
1: नानी माँ तुसी सुनाओ, आज मैं कुछ सुन के ही सोवांगी।
0: चंगा सुन फिर।

दोस्त, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

0: listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, mazeersolicitors.co.uk. Mazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00-57-1009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield

0: 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway.
2: Keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye. nayabsonline.co.uk.
3: एक्सीडेंट हो गया रपा
4: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई किराए की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया ते द क्लेम टीम तुसानी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
5: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब